0: ओके देमति जायदा रीमा एका को आणिका को देके लोबवावा के बुना हिसाबों अन्ना लवे इंगे ता
1: नेंगे
0: नेंगे लवे अगे अंतर नेंगे नि दो
1: आ
0: मिसाल का मेजो इवा लफियामो मी कों हिसाबे गणना को लवे क इंगे ने ता
1: इंगे दान
0: दा लेट्स सी दो ए मेजो इवा नेंगे इवीमा इंगे तो बलामा अरे

0: ने वाणी मी रंगळा त मी दिए मी जवाब त देउन त दे हासी
1: ने हा रंगळा ने
0: ए हा रंगळा ने
1: अलो ए सूर्या फिल्म त के वणी मी सवाल कोरी बा
0: ए मी
1: बेले हुरिया फिल्म ए वणी ए मे रस यूसुफ के स्थान कोले
0: या रब्बी यार ए मी मारा बडो मिस अप बेको दो तीनी एकम सजा गे मे खमदा फिल्म वा के नु मी दकनी मी जो मी एकम सम मिक्स अप फी दो मा
1: मिक्स अप या
0: अलो बला ले
1: ए हम वारा गिन फिल्म त कामो दे हा मसाक बिरर फिल्म त के तेरे मने 4426 हम वारा कमदा फिल्म
0: देम दिवे फिल्म तो गबड फेड ने हे बिजनेस वाल तक रफे शे मोरी हा फिल्म के मंजर एकवा फेशे म ए तो बितो जवाब देन तंग को उंदग वे कमको बाय तंद को हंदे ममो में सिंगज जे दो अफार बे मिजो बुना नोवन फार बला ला
1: बे जे तो
0: मिजो को सवाल तक विस्ने बला लचे
1: यस
0: इंगे हसीन वारा बड शुक्रिया इंगे
1: शुक्रिया
0: मिजो में मूवी मोड का फीचर को लदेंग हसीन में हसीन के वारा मसे के त्रि प्रोड्यूस एगो तो फिर नित को तो गबल्स कोरिया दान को उम्मीद करे सिंगे
1: यस
0: ओके थैंक यू वारा बडेंगे हसीन
1: ओके
0: मैं हफ्ता के मूवी मोड शो नी माला फकी वाला अस्सलाम वालेकुम

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: ಫರ್ಬದಮತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಂ ಸರಹದೆ ದಕ್ಕಾದೆ ಮಿ ವಾಹಕಾಗ ಫೆನ್ನಣಿ ಜೇಲ್ತಕ ದೇಮಿಗೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ನುರಕ್ಕಾದಿರಿ ಆಯಲಿ ದುಷ್ಮಣ್ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆಯ ಫೆತೆ ದಿಜುವಾಣಿಗೆ ವಾಹಕ ಆಯಲಿ ಆದ ಕಾದತಕ ಕವ್ಯಾತವ್ಗೆ ಕಸ್ತೊಳ್ತವ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಉಫೆದೆ ಲೋಯಬಿಗೆ ಸಬಬುಂ ದೇಯಾಯಿಲಾಗೆ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ್ ಹಲಾಕುಗೆಂದ ಹಿಸಾಬ ಕಂಕಂದೆ ಲೋಬಿ ಹೋದಮ ಕುರಾ ಮಸಕದುಗ ಎಮಿಹುಣ್ಣ ಜೆಹಣಿ ಅಮಿಲ ಆಯಿಲಾಯ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮ ದೆಕೊಳತ್ತೆದುವ
1: मेरा नाम सर बुलंद है। शायद मुदस्सिर ने कभी जिक्र किया हो मेरा आपसे।
0: मी रेटिंग्स के गोतुंग मी लिस्टु के एमे कुरी गोले एंग उफेदुंग। जंजीरे नंग एकानिवेस एकाविस एपिसोडुंग हातर सते का मिलियन ब्रेगीन व्यूस यूट्यूब का लिपावे। अधि एवरेज को कम में एपिसोड का 12.7 मिलियन व्यूस लिपुनो दुवस्त के वेस्तिया। हम न्यूज रिपोर्ट को फवागत का मी रेटिंग्स रिकॉर्ड तो मुगुराली ड्रामा है
1: असली आइडेंटिटी आपके क्या है ये छुपा कर रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए आपको यकीन दिलाता हूँ आप मुझ पर उतना ही भरोसा कर सकती हैं जितना मुदस्सिर पर करती थी
2: कहाँ है मुदस्सिर
3: जब तो याद आए चैन चुरा
0: मिद्वसर पाकिस्तान ड्रामा तक लोबिकुरा एमेगिनमी हूँ एक कणिक का मैसेज को वाहक दक्कमुदा ड्रामा की हम टीवी को में हुकुर अधि होने हिरदुवा हिगेरे अशे

0: ओएसटी
1: आदि देम्युती ओएसटी मिबैग मिहफ्ता का मिबलालनी दिवे सिनेमा के माजी का लावेकं मिहफ्ता का उनमें मिहोवाली दिहास एकार बनाहर निकिम फिल्म लोधिफा के प्रमोशनल लवा लवा किया फवनी उनोशा मिला वहीमना फवा फिल्म लोधिफा बलायर मिवरा खास उफेद में दिहास सोल बनाहर बेवी हैवन गोमी फिल्म एवोडों एम में कामया फिल्म की मि फिल्म मि फिल्म की व्यापारी के गुतु नाकामया फिल्म एक कमुग वियस फहुं फिल्म बेली गिन फरातक कामु दिया फिल्म आदि हमें यह की एक गौमी फिल्म एवोड का बड़ कामयाबी हो दी फिल्म आदि ओएसटी में भय मि हफ्ता का मि होवाले लोदिफा के मिलवया एकी का मिहा हिसाबों एमएफएस मिशो निमालाना इराद कुरव्या अन्ना हफ्ता का वेस मुनिफो फिल्म के दायरा के एमएफहु के मौलूमाता खबर आए की अनबदल कुराना

0: Game on!
1: Jason, vara riti lave ka fomi badal kolini den shau fashion us fa kolin ta vara bavar ro la ta kuna munda farate ke Jason ke na me sama e hun terin na belun terin na nenge e magam Jason ba furamun de furafie mi eva ka dakkalam bole nenge kuda ko nenge e diumu ga kurin hama ga me shau fa kolam be ne me raje ke film industry ke huri hama se kate bala farate film industry ke mase ke ta bala ya me constructive criticism बिना कुरुवानी में फाड़ो क्यों किया फराते जयशन्ना के हैं वे मैं जयशन्ना मैं आम गोते का फिल्म बालं कामुदायर उन्होंने कौन काल जोन रहते के तारतीप कोलन बेरे जकिन तारतीप कोलन
2: इम्मे बालाई तुम बालनी होरा बीरुवेरी फिल्म अब तो इस दिवे राज्य के बीरुवेरी फिल्म तब इस वाला कामुदे पेर गाम तक बीरुवेरी फिल्म तब साथ को इंडोनेशिया थाईलैंड तंतरगे टर्की तंतरगे ची पे आई थिंक वाला कामुदे ड्रामा फिल्म तब इस फैमिली थीम्ड एचीवेस वाला कामुदे थिंक सुपरनैचुरल एचीवेस वाला कामुदे साइंस फिक्शन इज माइंग एची फैंटेसी थिंक ओपेनहाइमर का लेट ची मिहोने ने हिस्ट्री या क्राइम मा थ्रिलर या मिहोने हाचे इंटरसेक्ट वा हतरो अंगोली का हुंडा फिल्म तब वाला बाला है पे then adi mi hasa ko mushtama ge hawa sa ga mi ole diri ole farata nasu farata hase ni benwa farata neurodivergent kudi mi hun na be ko to hada fun film tawara kam de my name is khan jashan ge ha kam de ni hem beke mara kam da film ge
1: okay ehme ma mi ane hin thi nan listu kiyali iru mi romantic film tak ku ge waha ke waran na de
2: ma e romance hun na mi huri ha film tak tere fe di fa
1: solely based on romance films taku ke waha ke na de ha gaya nuwa chiki pa
2: then romance is everywhere around us romance ho da kanu de romance ve ho ra tere ga ves romance faalwe drama tere ga romance faalwe ekam ko wa gote ki ishq ki modi zindagi barbaad kolla
1: vene ke a
2: gisluma le karuna pohora alanche he afsoos ke
1: ehm mi meha kamunu dani do
2: ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಬಿಬಿ
1: ಡಾರ್ಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ದೆನ್ ಜಶನ್ ಅವರ ಕಾಮುದಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಶಾಹು ಕೋರಿಮತಿ ಗೇಣಿ ಮೇಣು ಕಬ್ಬಿಬಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ದೆನ್ ಈಗ ಇತರ

0: Bajo no kung yung tihig tering dahil na wala kamo diya film eh lobby kaya fikir ano swal ma kaya lobby question
1: I films
0: ka I films ka may wala kamo diya tayo ito de film eh hing siya may ane si Vishnu makarnade ikam ko dahil na wala ng hiwe then dahil balam may wala film ka एक एलिस्टो का ही मैंने फिल्म का वार है ऊपर दो हो करे
1: जानना तो ये वाले जानना की फिल्म तो तिबुना जॉनर तो अगर हम फिर फिल्म है हमें कामुदान का मोमेंट मिलता
0: है ट्रेलर बाला आप वैस उम्मीद आलावे ये न्यूरो डाइवर्जेंट कुदिन जैसन किया वार है ekudin jashan kewa din kudin all over the south africa ilat ko na tija ves varana gore hem academic coach ekudin ek mas ekudin mani bodeti vege bodeti mi hunda varu hama mi film ge fenna kahal character ek mon ek shi ge ve ehem e vara close to my heart hama hita vara ga maulu subject
1: den film vara ga fara tem me den shahu mi waha ka dekum ge kurin jashan buniya karne film I daira ga mas ek taka vara shauguri wa kam sfa ga pure ve fara tetti ki ha var ke te de pai
0: वारा बढ़ते देंगे फीचर फिल्में के मासिक के वैसे रात को भी आकुरांग है बा इंशाल्लाह बेलुं तेरे ना मेर ना हर बादल कुराने
1: के फिल्म के तफसील देंगे हर में होता नहीं फिल्म के मेर को विसर का फिल्म यूलान करे वेखा कंकं करे हमें मामा गया मस जायशन मी आई की ये हमें कनी एम में दाय रहे फतह कुरा करनो मोली अनेहें बुना कमावा ना मुनिफ़ोर फिल्म के दायरा फतह करंगे ऐसे तेरे हमें मां उम्मीद है कि हम गया मस में वाला कुरिया रह गए दियो जैसे मैं मिहा हिसाब अंग्यार ती कुरे वों ताज़रीबा थका दा तुर थका ती होरी हाँ कमें के तेरे वाले गिना फरायते के ही तेरे कमाए की कुरिया देवेनी कौन फरायते का शुकुर अदा कोलम बेनो वाने
0: आइला जैसे गे इमीडिएट फैमिली बापा मामा बेबे रूही को तुम मॉरल सपोर्ट वाले दे जैसे ना पर तो इस Then, emme gair rahmet teringe terega hi mene kudin mihun duniya ke kankol tau ke pati be jashin BRP ke faha ka kuninge emme gair bai rahmet teringe naan nang emihun ekolu ka tibe ke mes divehi understand noir was belik BRP vote was le emihun na ekudin na hama hitu ke emme umukun shukura ta kore dive raje ke was tibe team jashin Maldives adi beiru ka tibe team jashin international kudin East Island Chile hisabu ka Australia Africa ke kaum tau guys ti mene ko ding ek din na hai tesa shun aslo age ka tu ka hiver mili mene ek din mara beenu wege hey je what's up what are you doing what's new es wala jawab de kom me afi avale bas kuriya me ara
1: ehme mama ummeed ki vara kuriya ra gen dana ka majai sha shau me fara tun de hama kudu kudu hadi ya de vara kudu shukriya show ga baver veli
0: dem me libi fa hama gen loni e bune de dive bahu guys gen fa ga ni fala ma ke ek kom mi he tun na nonge
1: हमारा बड़े शुक्रिया है हमारा वो फाज मिशो है ऐसा वक्त को रहे तो कोला हम जयशन के मी कैरियर के कॉम में सीतुर वाहक तक के शाहू में ना हिस्सा कोला देने में हम इधर नहीं आप इस काम में आप
0: हमारा बड़े शुक्रिया शाहू अब इस इधर नहीं शाहू उड़े हुई हाथ दारा के इस काम में आप
1: हमारा बड़े शुक्रिया मी अब तक के गेम ऑन शोस निम्मा दावा को तुम्हें जोन शाह उम्मीद में कोरा नहीं शोगे तेरे मिगे ने सुनो मेहमान ना मेहमान के वाहक तय होते ना वारक कमुदिया का मवारा मुफावर वारक बाजर वक्त को रखे तुम वकेला अस्सलाम वालेकुम

कुछ भी ना बंदी है नसीब मन जुदा आई में पतवा आई में पतवा जादू आहानुला ने जादू आहानुला